मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

शहर नो अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतो एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

90.4 मेगाहर्ट्ज पर 95 12 99 66 88 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज।

कहे मिरगलो सुन ए मिरगली, तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पाव पर खड़ी मिर्गली हरीसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देखकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देखकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: आईएएस अधिकारी ने सिर्फ पेंट की मदद से घरों का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया। चेन्नई में बढ़ती गर्मी ने गरीब और छोटे घरों की जिंदगी मुश्किल कर दी। छतें दिन भर धूप सोख लेती और रात तक कमरे तंदूर जैसे गर्म हो जाते। एसी तो दूर, कूलर चलाने का बिजली का बिल भी कई परिवारों की बस की बात नहीं था। तब आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने सोचा, समस्या ऊपर है तो समाधान भी ऊपर ही होगा, छत पर। तमिलनाडु के अर्बन हीट मिटिगेशन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने शुरू किया कूल रूफ इनिशिएटिव। योजना बेहद सरल थी। छतों पर लगाया गया एक खास सफेद रिफ्लेक्टिव पेंट जो धूप को सोखने के बजाय वापस लौटा देता है। लेकिन हजारों घरों की छतें पेंट करवाना आसान नहीं था। लोगों ने कहा, छतें तो सालों से ही ऐसी हैं, अब क्यों पेंट करें। फिर भी सुप्रिया ने हार नहीं मानी। लोकल मजदूरों को ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इस मुहिम से जुड़ गया और जब गर्मी आई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। कई घरों के अंदर तापमान 5 से 8 डिग्री तक कम हो गया। जो कमरे पहले दम घोट देते थे अब रहने लायक हो गए। दोपहर की गर्मी में बुजुर्ग भी आराम से सोने लगे। इसी पहल के लिए आए सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की ओर से दिया गया। आए सुप्रिया साहू की ये पहल सिखाती है कि कभी कभी जलवायु संकट का समाधान बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी बस पेंट की एक परत पूरे शहर की गर्मी कम कर सकती है। सोचिए, अगर हर शहर ऐसा करे तो कितना फर्क पड़ेगा।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: जब बाकी राज्य युद्ध में उलझे थे तब भारत की एक रानी सड़कें, मंदिर और रोजगार बना रही थी।
2: भेड़ बकरी चराने वाली एक साधारण सी लड़की से भारत की सबसे महान रानी बनने तक ये कहानी है अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि भारत का इतिहास बदल दिया। इमेजिन कीजिए 1700 का भारत, जहां औरतों को पढ़ाना भी गलत माना जाता था। उसी दौर में महाराष्ट्र में जन्मी अहिल्याबाई के किसान पिता मनकोजी राव शिंदे ने अहिल्या को पढ़ना और लिखना सिखाया, समाज की परवाह किए बिना जीना सिखाया, और यही थी इतिहास की नींव। एक दिन मराठा साम्राज्य के सरदार मल्हारराव होलकर ने गांव से गुजरते हुए अहिल्या को देखा। सिर्फ 8 साल की उम्र और आंखों में आत्मविश्वास की चमक, उसी पल उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। राजमहल आकर अहिल्याबाई ने प्रशासन सीखना शुरू किया, राज्य कैसे चलता है, जनता की समस्याएं कैसे सुनी जाती हैं। तभी एक युद्ध के दौरान उनके पति खांडे राव की मृत्यु हो गई। समाज ने कहा पति के बिना औरत का क्या जीवन, सती हो जाओ, लेकिन अहिल्या ने साहस के साथ मालवा की गद्दी संभाली। उन्होंने लोगों का भरोसा जीता और उनके लिए सड़कें, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई। भारत भर में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे 12,000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। महेश्वरी साड़ी की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय हथकरघा की शान है। उनके राज्य में बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की कमाई 75 लाख से बढ़कर 125 करोड़ तक पहुँच गयी थी।
1: विकास की नई परिभाषा लिखने वाली अहिल्याबाई होलकर की कहानी।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: सिविक सेंस की बात करते हैं, यहाँ पे 10th के बच्चे थे जो जा रहे हैं मनाली के टूर में घूमने के लिए।
2: जीरो सिविक सेंस। अब ये देखिए, मिजोरम के ये यात्री अपना कचरा खुद बैग में भरते हुए, पूरा डिब्बा साफ, फर्श पर एक भी टुकड़ा नहीं, एक ही ट्रेन, एक ही देश, पर सोच पूरी अलग। तो आखिर इस फर्क का राज क्या है? एक शब्द, तोलम गायना, मतलब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। इसी सोच की वजह से आइजोल को साइलेंट सिटी कहा जाता है, जहाँ हॉर्न कम बजते हैं, लाल बत्ती कोई नहीं तोड़ता, लोग लेन में चलते हैं, जब कोई सड़क पार करता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, सड़कें साफ हैं, लोग अपना कचरा खुद उठाते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सभ्यता कोई बड़ी बात नहीं, ये आदत है। और इधर नया चार्जिंग पोर्ट लगते ही कुछ ही घंटों में कूड़ेदान बन जाता है। मिजोरम में भरोसा इतना है कि कई दुकानों में दुकानदार तक नहीं होते, जो चाहिए उठाओ और ईमानदारी से पैसे रख दो, क्योंकि उन्हें बचपन से बेहतर बनना सिखाया जाता है। बियाते हर शनिवार सुबह स्कूल के बच्चे हाथ में झाड़ू लेकर अपनी अपनी गलियों की सफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ कचरा किसी और का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ हम में से ज्यादातर लोग मैं पहले में जीते हैं, वहाँ मिजोरम चुपचाप मैं बाद में को जीता है। रात 3 बजे लैंडस्लाइड हटाना हो या किसी पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देना, यहाँ कोई पीछे नहीं छूटता। छोटा सा राज्य पर बहुत बड़ा सबक, क्योंकि सिविक सेंस सड़कें नहीं बनाती, चरित्र बनाता है। देश बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी। सवाल ये नहीं कि मिजोरम ऐसा क्यों है, सवाल ये है क्या हम भी ऐसे बनना चाहते हैं?
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: दादी, पोता और 70 साल पुराना एक मिट्टी का घर, नानी चो वाड़ो, कोंकण के एक छोटे से गांव की ये कहानी है अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने की। सिंधुदुर्ग जिले के पांगरड़ गांव के स्मितेश छठी क्लास के बाद ही अपने गांव से दूर मुंबई चले गए। वहीं पले बड़े और नौकरी भी की, लेकिन सालों के बाद भी सोशल मीडिया पर कोंकण के खूबसूरत वीडियो देखकर उन्हें अपने गांव की याद आती, जिसे वह कहीं पीछे छोड़ आए थे। बस फिर क्या था, उसी याद को ताजा करने वह कुछ दिनों के लिए गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके 70 साल पुराने मिट्टी के घर की देखभाल उनकी दादी सुनंदा तांबे अकेली ही कर रही है। आज भी वो घर की जमीन लेपती है, सारे त्योहार मनाती है और सादगी से जीती है। यह सब देख स्मितेश ने ठान लिया कि उन्हें भी इसी तरह से जीवन जीना है और शहरी लोगों को कोंकणी संस्कृति से रूबरू करवाना है। इसके लिए स्मितेश ने सबसे पहले अपना कैमरा बेचकर इस घर की मरम्मत करवाई, मिट्टी की दीवारों पर नए छप्पर डालकर उस घर को फिर से जिंदा कर दिया और खोल दिए इसके दरवाजे मेहमानों के लिए, जहां लोग गांव का पारंपरिक जीवन, दादी के हाथों का स्वादिष्ट कोंकणी खाना, त्योहार की रौनक, देसी पेड़ पौधे और पक्षी देखने आने लगे। यहाँ उन्हें ट्रेकिंग और योगा का अनुभव भी मिलता है। यहाँ आने वाले मेहमान यही के जीवन में और दादी पोते की इस सुंदर कहानी में घुल मिल जाते हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी उनकी कहानी तो इस बार छुट्टियों में नानी चो वाड़ो जरूर जाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 1200 सूखे बोरवेल्स को एक अधिकारी ने बना दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मिलिए IAS प्रताप एम से। तमिलनाडु के विरुधनगर के एक किसान परिवार में जन्मे प्रताप बचपन से ही पानी की हर एक बूंद की कीमत समझते थे। सालों बाद जब वे तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर बने तब उन्होंने देखा कि जिले में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई कुएं सूख चुके थे लेकिन दूसरी ओर हर मॉनसून में सड़कों पर बारिश का पानी भर जाता। लाखों लीटर पानी नालियों में बहकर बेकार चला जाता। तभी उनकी नज़र जिले में मौजूद हजारों बंद और बेकार पड़े बोरवेल्स पर गई। उन्होंने सोचा क्यों ना सूखे बोरवेल्स को फिर से पानी बचाने के काम में लाया जाए। न कोई महंगी तकनीक, न कोई बड़ा बांध, बस एक सरल और समझदारी भरा विचार। उनकी पहल से 1200 से अधिक सूखे बोरवेल्स को रेन रिचार्ज स्ट्रक्चर में बदल दिया गया ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के भीतर जाकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके। और पहले ही मॉनसून के बाद पहल से शानदार नतीजे मिले। कई इलाके में भूजल स्तर 5 से 10 फीट तक बढ़ गया। सूखे कुओं में फिर से पानी आने लगा। हैंडपंप दोबारा से चलने लगे। किसानों को अपनी फसल के लिए पानी मिलने लगा और जो गांव कभी पानी के टैंकरों पर निर्भर थे वहां के कुओं में फिर से पानी लौटने लगा। जिन बोरवेल्स को लोग बेकार समझ चुके थे अब वही पूरे इलाके की जीवन रेखा बन गए। IAS प्रताप की यह पहल याद दिलाती है कि हर समाधान नया होना जरूरी नहीं, कई बार जवाब उन्हीं चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत के दूसरे शहरों में भी ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: मेघालय का ये वर्ल्ड फेमस रूट ब्रिज बस एक 10 साल के बच्चे की सोच का नतीजा है। पहली बार जब 10 साल के थे तब उन्होंने देखा कि तेज बारिश के दिनों में उनका पूरा गांव नदी से कट जाता था। समस्या बड़ी थी लेकिन समाधान उन्हें मिला दादी नानी की उन कहानियों में जहां पेड़ों की जड़ों से पुल बनते थे। बस यहीं से शुरू हुआ एक सफर जिसमें ना तो मशीनें थी ना इंजीनियरिंग की डिग्री। हेली ने रबर ट्री की जड़ों को बांस और लकड़ी के सहारे मोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें जोड़ते गए। ये एक दो दिन का काम नहीं था, 20-30 साल की मेहनत लगी। जैसे जैसे हेली बड़े होते गए वैसे वैसे पुल भी बड़ा और मजबूत होता गया। आज हेली 69 साल के हैं और उनका बनाया लिविंग रूट ब्रिज हर साल 10,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मेघालय की खासी और वार जनजातियों की जिंदा विरासत है। साल 2022 में यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और अब 23 साल के मॉर्निंग स्टार खोंगथॉ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो गांव जाकर लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे जड़ों से सिर्फ पुल ही नहीं झूले, बैठने की जगह और टनल भी बनाई जा सकती है। हेली वॉर और मॉर्निंग स्टार का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक गहरा रिश्ता है जड़ों से, मिट्टी से और इस जिंदा विरासत से। एक ने इसे बनाया, दूसरा इसे संवार रहा है और इस तरह एक 10 साल के बच्चे की सोच आज दुनिया को सिखा रही है कि अगर जड़े मजबूत हों तो उनसे सपनों के पुल भी बन सकते हैं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: पिछले 6 सालों से इस कॉलोनी से कोई भी कचरा बाहर नहीं गया। यह है साउथ दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी, जहां 280 घरों से रोज 300 किलो कचरा निकलता है, लेकिन उसमें से कुछ भी लैंडफिल में नहीं जाता। यह बदलाव शुरू हुआ 8 साल पहले, जब डॉक्टर रूबी मखीजा RWA की सेक्रेटरी बनी। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानती थी कि साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर होता है, इसीलिए उन्होंने सामूहिक स्तर पर बदलाव लाने पर जोर दिया। सबसे पहला कदम, हर घर को समझाना कि वे अपना कचरा खुद छांटे, यानी गीला, सूखा और हजार्डस वेस्ट। दूसरा, सफाई कर्मियों को अलग अलग कचरा इकट्ठा करने के लिए मनाना। इस पहल से आज हर दिन 125 किलो गीले कचरे की खाद बनती है, जिससे कॉलोनी के बगीचे हरे भरे हो रहे हैं। वहीं सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था, लोगों को बदबू का डर था। हेल्पर्स ने कहा यह हमारा काम नहीं। तब रूबी और उनकी टीम घर घर गई। उन्होंने डस्टबिन के बारे में लोगों को समझाया, इस पहल के फायदों की जानकारी दी, रोजाना अपडेट, वीडियो और सर्कुलर भेजना शुरू किया ताकि सभी लोग जुड़े रहें। धीरे धीरे यह बदलाव पूरी कॉलोनी की आदत बन गया। उन्होंने एक RRR सेंटर भी शुरू किया है, जहां लोग अपने पुराने कपड़े, फर्नीचर, यहां तक कि गैस सिलेंडर तक डोनेट करते हैं। इस पहल से अब तक 30 टन से ज्यादा सामान NGO के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, कॉलोनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए बारिश का पानी भी जमा किया जाता है। टैप पर पानी बचाने वाले एरिएटर लगे हैं। साथ ही यहाँ एक कम्युनिटी फ्रिज भी है, जहाँ लोग अपना बचा हुआ खाना

0: खाना जरूरतमंदों के लिए रखते हैं। इस कॉलोनी से अब तक 3000 किलो ई वेस्ट जमा हो चुका है। 17 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया गया है और एक भी कचरे का बैग लैंडफिल में नहीं गया। क्या आपके मोहल्ले में उठाया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा ही कोई कदम?
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: गांव में जब कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है तो लोग गर्व से कहते हैं हमारे गांव का लड़का है, लेकिन अगर कोई कैमरा लेकर घूमे तो सवाल पूछते हैं ये क्या कर रहा है। राजस्थान के असाड़ा के यश

0: छोटे से गांव से निकलकर कैमरे की दुनिया बसाने वाले यश के लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को बचाने की जिद थी। जहां लोग बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए भागते हैं, उन्होंने चुना अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का रास्ता। गांव की गलियों, पुराने घरों, बुजुर्गों की कहानियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर दुनिया तक पहुंचाया। पर गांव में लोगों को समझाना मुश्किल था। कभी लोग हंसे, कभी बोले इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन यश के सपनों पर उनके घर वालों को भरोसा था। पहला DSLR कैमरा भी पिता ने ही दिलाया था। आज उनकी तस्वीरें सिर्फ गांव तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया को भारतीय संस्कृति की असली झलक दिखा रही है। अब उनकी पत्नी संतु चौधरी भी इस सफर में उनके साथ है। जिस समाज में अब भी पर्दा प्रथा है, वहाँ उन्होंने एक नया रास्ता चुना, संस्कृति की सुंदरता को पूरे सम्मान के साथ दुनिया तक पहुंचाने का। जब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ये कलाकार अपने गांव की कहानियों को कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि हमारी परंपरा बस यादें ना बने बल्कि हमेशा जिंदा रहे। उनकी हर तस्वीर यही कहती है, अपनी जड़ों को मत भूलो क्योंकि वही असली पहचान है। यश की तरह हम सबके पास भी एक रास्ता होता है कि या तो दुनिया की दौड़ में सपने भूल जाएं या फिर अपना रास्ता खुद बनाएं। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे?
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 28 साल की मेहनत, एक रिटायर्ड दंपति और पक्षियों के लिए बना 6000 पेड़ों का जंगल, ये कहानी है गुजरात के दिनेश चंद्र ठाकर और उनकी पत्नी देवेंद्र बेन ठाकर की, जिन्होंने बंजर जमीन को सींचा, सालों झोपड़ी में रहे और एक पौधे से शुरुआत कर 3 एकड़ जमीन को बना दिया हरा भरा निसर्ग निकेतन। आज यहाँ 200 किस्मों के 6000 पेड़ खड़े हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के पीछे है 1984 की भीषण गर्मी और एक करूर कहानी।
2: उसी वक्त हमने कोयल, बुलबुल ऐसे छोटे मोटे पक्षी को मरते हुए देखा। पेड़ पर से गर्म तापमान के कारण नीचे गिर जाते थे। उनका दुख हम दर्द हम देख नहीं सके, तो हम दोनों ने, मेरे पति और हम दोनों ने निश्चय किया कि हम ऐसा निसर्ग बनाए कि जहाँ पक्षी को दाना, पानी और रहने का आश्रय मिले।
1: दोनों तब स्कूल में पढ़ाते थे और रिटायरमेंट से पहले ही प्रकृति की सेवा का फैसला कर लिया। फिर 1999 में गुजरात के धनोरा गांव में 3 एकड़ बंजर जमीन खरीदी, लेकिन यहां हरियाली फैलाने का काम आसान नहीं था, न बिजली न सुविधाएं। कई सालों तक वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहे, खुद एक एक पौधा लगाते और पानी देते रहे। भीषण गर्मी में कभी पौधे सूख जाते तो कभी जानवर उन्हें खा जाते, लेकिन वे रुके नहीं, सालों तक उसी जज्बे के साथ अपने मिशन में जुटे रहे। धीरे धीरे बैर, इमली, कचनार जैसे देसी पेड़ बढ़ने लगे और उसके साथ ही लौटने लगे पक्षी। आज निसर्ग निकेतन मोर, तोता, बुलबुल सहित सैकड़ों पक्षियों का घर बन चुका है, जिनके लिए दिनेश भाई और देवेंद्रा बेन आज भी हर दिन 100 किलो अनाज और पानी की व्यवस्था करते हैं। इन पक्षियों के लिए ही उन्होंने निसर्ग सेवा ट्रस्ट भी बनाया है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब वे गाँव में 10 और ऐसे जंगल विकसित कर रहे हैं। जिस जमीन को कभी गुजरात का मिनी रण कहा जाता था, आज लोग वहां हरियाली और पक्षी देखने आते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक मजबूत इरादे वाले दंपत्ति की बदौलत, जो आज 75 और 78 की उम्र में भी आराम करने की जगह प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। आइए उनकी सेवा और समर्पण का सम्मान करें।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब के साथ जयपुर के ये युवा कर रहे हैं शहर की ऐतिहासिक जगहों को साफ।
2: अभी तक कर्तव्य टीम ने 6000 किलो प्लस केजी का कचरा उठाया है, जिसमें से 3000 केजी प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक है। यह कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि हमारी हेरिटेज साइट्स और पब्लिक स्पेसेस को एक सांस दिलाने की एक पहल है।
1: छुट्टी के दिन जब सभी आराम कर रहे होते हैं, तब कर्तव्य टीम के सदस्य निकल पड़ते हैं सफाई करने, ताकि कचरे का ढेर बन चुकी शहर की एक धरोहर फिर से जिंदा हो सके। एक साल पहले जब 3 दोस्त संदीप, मोहनीश और पुष्पेंद्र ट्रैकिंग और साइकिलिंग के लिए आसपास के पहाड़ों पर जाते थे, तब उन्हें हर बार खूबसूरती से ज्यादा कचरा दिखाई देता था। नजरअंदाज करने के बजाय उन्होंने वो कचरा उठाना शुरू किया। धीरे धीरे ये छोटी सी कोशिश उनका मिशन बन गई। कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया तो कुछ ने कहा, ये सरकार का काम है, तुम नौकरी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय लोगों को जागरूक करने का काम किया।
3: गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लीनिंग कर चुकी है, उसके बाद है ये कचरा, और अभी कचरा और भी है।
1: ऑफिस के लोगों को जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप और कर्तव्य टीम बनाकर हर वीकेंड युवाओं को बुलाना शुरू किया। कभी पेंटिंग वर्कशॉप तो कभी हेरिटेज वॉक का बहाना।

0: अपने शहर को साफ करने के लिए एक नहीं सैकड़ों युवा एकजुट हो गए।
1: इन जनों का इनिशिएटिव आज 250 लोगों का टीम, ये इनिशिएटिव बन चुका है यूथ लेड इनिशिएटिव, जिसमें जेन ज़ी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।
0: जमा किया हुआ वेस्ट वो खुद अलग करते हैं, फिर उन्हें रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका को सौंप देते हैं। आज जयपुर शहर का जल महल, पत्रिका गेट और सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ कुंड, छूटन की बावड़ी, हाथनी कुंड, झालना लेपर रिजर्व जैसे पब्लिक प्लेसेस हमेशा साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ युवा हैं जो कंप्लेन नहीं कंट्रीब्यूट करते।
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गई। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे
2: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है, इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं
0: जी। सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह
0: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
0: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ

0: और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर यह चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी।

0: बुधियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूं। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया,

0: गोविंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है। अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।

0: हर गोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियो, कब तक जियो?
1: बड़ी बहुया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हा? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए, मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी,

0: पाए लागू।
1: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ। क्यों भाई,
3: रहा खर्च तो है?
4: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
2: अच्छा
4: अच्छा, राम राम
3: राम राम।

0: हरगोविंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस को उसकी मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज, सौ बाळ मित्रों नु स्वागत करू छू बाळ सभा मां।
6: कागड़ो काड़ो केम छे। घणा वर्षो पहला पक्षियों मात्र सफेद रंगना ज हता। एनाथी कोई ने खबर पड़ती नहीं कि कयू पक्षी कया प्रकार नु छे। अने तमे ज विचारो, सफेद पक्षी लीला झाड़ पर थी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हाई कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो आत्मसम्मान बढ़ जाता, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी है, परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: মানে মানে ঘুম পাড়ানোর ইচ্ছা থেকে যাবে।
1: শান্ত নির্জন খড়িকার স্থলে উভা উভা
0: মানে জোর কই
1: নন্দে হার সামনা খড়ে উপর মার আওয়াজ পড়ে খাই হার লুসি চমকি বিদ্যু বঙ্গা পণ আশ্চর্য পামে বনি ঝড়প থি উভো হতো তিতর পাবে। अचानक मने लाग्यो कि लुसी के जुदी जी देखाई छे भले ते विदेश नी होय भले ते पहली बार यहाँ आवी होय अने हूँ पण पहली बार ज अहीं आव्यो हो। अगाउ क्यारे कोई समय में लुसी ने अहीं जोई छे जाणे अनाधिकार थी हूँ अने लुसी वारंवार वनो मां पत्रार सुसान किनारा पर आवता जता रह्या छे। पत्रार भूतल पर वही रहेलो रुद्र जमानो प्रवाह मारा दिन यार पार बैठो अनुभव क्षण बेक्षण में लाग्यो कि आ स्थले जड़ चेतन कशुच बीजाती अलग पाड़ी शकाय थी मलती बेव किनारा घेरी ने नमला काड़ा खड़को एक आद बेमा वृक्ष लूसी हूँ बीतु बंगा अने सदा सदा सत्य सांगी लंगा नमदा पड़े पड़े बिचान स्वरूप बदला तरह छे। रीवा रीवा मैं परी साथ पाड़ी लूसी एकदम हमारी पास आवी मगर हाथ पकड़ी ने खींचता कहे તમને કઈ થાય છે? ના મેં કહ્યું ફક્ત આનંદ માં છું। આટલું બોલતા જ મને જાણ કે રહસ્ય લાદી ગયું। આનંદ અનિમળ પ્રાકૃતિક અનુભવ એ જ અનુભવતીની ઈચ્છા વિશ્વની એક વેટકાવી રાખનાર એક તંતુ છે। પ્રકૃતિની ગોદમાં ઉછળતા જનોની પ્રકૃતિએ મુક્ત

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कहानी पूरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: कदाच डायो की जाए ते ख्याल थी खजाना विषे पूछवानी इच्छा ने मैं दबावी, पण नाना साहेब थी गुफा जोई आवानी इच्छा हूँ रोकी न शक्यो। भवानी नी गुफा जोवा अमारा थी जई शकाय? मैं पूछ्यो। बीतू तमने लई जाए, डाये कह्यू, पण मारे एनु काम छे, बहु दूर न होत तो अमे एकला पण जई शकीशुं, मैं कह्यू। जवामां बीतू बंगा अमने इंद्रा सीढ़ी सुधी मूकवा आव्यो अने आगळ जती केळी बतावीने पाछो फर्यो। इंद्रा सीढ़ी उतरीने नदीमां उतरवाने बदले ऊपरना किनारे रहीने नदीना मुख तरफ सीधी चाली जती केळी पर अमे चाल्या। 15-20 मिनिट चाल्या होईशुं कि एक टेकरी पर पत्थरनी फाटमांथी नानकड़ा झरणा रूपे प्रकट थती श्री गंगा नजरे पड़ी। थोड़े ऊपर जता जमणी तरफ एक विशाळ गुफा, सिंधुना थापा अने त्रिशूल देखाया। आपणे पहोंची गया, लूसी बोली। हूँ पत्थर पर चढ़ो अने त्यां स्थिर थई गयो। गुफानी एक तरफ उभेला वृक्ष पासे उभी रहीने मलीर धारिणी वृक्षनी छाल उखेड़ीने एकठी करती हती। तेनी पीठ अमारा तरफ हती। लूसीनुं बोलवुं सांभळीने ते स्त्री अमारा तरफ फरी अने एक क्षणे तेणे माथे ओढेलुं मलीर मुख पर खेंची लीधुं। તે ક્ષણાર્ધમાં મારી નજર તેના ચહેરા પર પડી અને મારાથી બોલાઈ ગયું, ઓહ ના, કાલેવાલી

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आए दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है
1: और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन और गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।

0: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं, परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: है। दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।